हे गुरु गुरु रामदास गुरु। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।